0: उस दोनों जगह जैसे होगा ये इवेंट, तो आप डेट है 5 सितंबर, टाइम है 3:30 PM ऑनवर्ड्स।
1: जी हाँ, और जो 5 सितंबर है याद दिला देखिए, एक सरडे पड़ता है, तो ज़रूर आप जाइए भाग ले। और एक्चुअली वही पर्व रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी का भी, तो आई नो एवरीबॉडी उसी हम कहेंगे सभी यू नो सेलिब्रेट करते रहेंगे। और
0: जन्माष्टमी
1: हाँ, हम फिजी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो आई थिंक हमारा फ्राइडे को फिनिश होता है।
2: After Krishna Janmanandotsav,
1: जी हाँ, तो ये आप करो।
2: Mostly in Indian, in India, temples are doing Janmashtami. Janmashtami बहुत कम होते क्योंकि everyone is having fasting that day. और फिर रात को 12 बजे जाके भगवान के दर्शन करके, और फिर दूसरे दिन जब कृष्ण नंद नंदगांव में पहुंचते हैं तो ये नंदोत्सव होता है। और फिर नंदोत्सव में जितने गांव वाले हैं वो पूरे उनको पता चलता है, अरे क्योंकि नंद नंद बाबा और यशोदा माता को बहुत दिनों बाद, बहुत साल के इंतजार के बाद में कृष्ण आए थे, तो उनका उत्साह अपरिमित था। और उनके उत्साह को भाग लेने के लिए जितने नंद गांव के लोग थे, चलो चलो नंद राय के यहाँ जाएंगे और उनको कृष्ण के आने की बधाई देंगे, उनके घर लाला आया है, तो वो लाला के उत्सव की बधाई देने जाना है और बधाई लेने भी जाना है। और फिर कृष्ण कन्हैया निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और फिर ये दही हंडी का उत्सव होता है, दही हंडी बांधी जाती है और सारे मिलके उसको दही हंडी को फोड़ते हैं, और सारे बच्चे दही मक्खन को लूट लूट के खूब खाते हैं। तो जो लूटने के लूट कर खाने में जो मजा है वो छोटे छोटे बच्चों को मालूम पड़ता है, हमारे टाइम निकल गया लेकिन अभी यहाँ के बच्चों को इतना मालूम नहीं है, तो उनके लिए स्पेशली ये एक अट्रैक्शन होता है।
1: जी, तो ये जो आप इवेंट होगा इस पर्टिकुलर डे को 5 सितंबर को, तो ये आप पोटली बनाने वाले हो इसमें रखोगे?
2: हाँ, यस जी, मटकी बनेगी प्रॉपरली, जैसे ये है सीन, बस आपको इसी तरह का सीन दिखेगा, बस इस तरह की बिल्डिंग नहीं दिखेगी।
1: मुझे फोटो दे दो। ठीक है, तो ये मीना जी आपको बताने की कोशिश करें, तो नीचे कैन शो इट देयर।
2: हाँ, तो आपको बिल्डिंग नहीं दिखेगी क्योंकि बस बाकी सीन यही रहेगा। लास्ट टाइम ऑल्सो वी डन दिस, हमने गए हम लोग अच्छे से रस्सी बांध के और बढ़िया सी मटकी लटकाते और फिर सब बच्चे आके उसको ट्राई और फिर वो फोड़ते और फिर क्या धमाल, उनकी खुशी उस वक्त देखते नहीं बनती, आप उनको कितना भी वो एक क्षण की खुशी होती है लेकिन बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। तो उसमें उसमें उस मटकी में माखन होता है, मिश्री मिली हुई होती है और नीचे चॉकलेट्स होते हैं ताकि बच्चे खूब लूटे। फिर बच्चों को हम स्पेशली उस दिन हम लोग खिलौने के प्रोग्राम करते हैं, तो बच्चों को भी बधाई मिलती है और बड़ों को भी मिलती है। तो जो भी आने वाला है उनको सबको भर भर के लड्डू और गिफ्ट और चॉकलेट छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये एक अट्रैक्शन होता है।
1: जी, साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। जी हाँ, अगर आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं देन डेफिनेटली यू वुड वांट टू ब्रिंग देम देयर। और बच्चों के लिए तो खुशखबरी, आई नो शायद वो हमें नहीं सुनेंगे अभी, लेकिन उनके लिए खुशखबरी है कि एटलीस्ट एक ऐसा दिन रहेगा जहाँ उसको डांट नहीं मिलेगा, वो लोग बदमाशी कर सकते हैं। जी, बिकॉज ये कृष्ण जी का त्यौहार है तो ऑब्वियसली उनका छुट्टी रहता है। सुनने में तो बहुत ही खुशियाँ लगती, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो बड़े लोग हैं वो लोग भी आएंगे, और स्पेशली जैसे मीना जी बोल रहे हैं कि बैक इन इंडिया या तो फिर हम फिजी कहेंगे या जिस जहाँ से भी आप आए हुए होंगे वहाँ का माहौल कुछ अलग होता है, और यहाँ पे हम काफ़ी मिस करते हैं, और इस तरह का जो माहौल क्रिएट होता है देन डेफिनेटली यूड वॉन्ट टू कम एंड ज्वाइन। तो अमित जी, हैव यू बीन इन टू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स बैक इन इंडिया?
0: इन इंडिया to an extent, I was about to ask you the same question, कि क्या फिजी में भी ऐसे ऐसे होता है दही हंडी वगैरह फिजी में?
1: I don't think so. मैंने कभी देखा नहीं है कि ये सब होता है। हम जब यहाँ पे होली जब होता है, होली त्यौहार होता है, आप लोग जो मटके लगा लटकाते फोड़ना पड़ता है, उतना पॉपुलर लाइक हमारे नहीं था, बट फिर भी वी हैव अदर कम्युनिटीज एज वेल, शायद गुजराती लोग भी मनाते होंगे, शायद उसमें होगा, लेकिन हमारे जो नॉर्थ इंडियन साउथ मैंने नहीं देखा है। हमारे में होली तो हम खेलते हैं, जो रंग वगैरह लगाते हैं, जन्माष्टमी जिसे आप जानते हो, आपने तो हमारे जो फीजी मंडली को देखे होंगे, सनातन हॉल भी आप जाते हो, तो काइंड ऑफ थिंग, और क्रशिश फीजी सेशन भी आपको मालूम है, और भी काफ़ी मंडलीज है, तो हम उस तरह करते हैं। हम लोग 7 या 8 डेज जो होता है हम पूरा कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं और वो सब करते हैं, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो नंद उत्सव, ये आई डोंट थिंक फिजी में या हमारे कम्युनिटी में बनता, बट इट्स एक्साइटिंग, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, और यही आती है एडवांटेज है क्राइस्टचर्च में कि हम यहाँ आते हैं और सभी में रंग जाते हैं।
2: अभी तो थोड़ा सा कमर्शियल भी हो गया है हमारा, तो हमारा जो सोचने का तरीका है

0: राधा कृष्ण भजन मंडल क्राइस्ट चर्च का, स्पेशली कि वो जो ट्रेडिशन हमारा पूरा था हम वही लाए। अब तो बॉम्बे में बहुत थोड़ा सा कमर्शियल हो गया है, तो ये जो हंडी होती है इसके ऊपर आपको मालूम होगा 1-1 करोड़ की हंडी बनती है, और उसके ऊपर कम से कम 10-12 ग्रुप होते हैं, वो सारे ग्रुप सुबह से शाम तक ट्राई करते रहते हैं, उसको ट्राई करते रहते हैं। तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है वहाँ हार्डली 1-2 साल का होता है, उसको सबसे लास्ट में चढ़ाते हैं, और फिर वो उसके हाथ में वहाँ तक नरियल पहुँचाना, और फिर नरियल आप ऐसा मैं समझो कि डंडे वंडे से फूटती है, बाकायदा नरियल से फूटी जाती है, ये बॉम्बे का तरीका है। और वृंदावन में भी इसी तरह से होता है, और हम सोचते हैं कि हम भी वृंदावन, छोटे से क्राइस्ट चर्च को वृंदावन बनाएं।
1: जी हाँ, जैसे मैं सुन रहा हूँ तो मुझे पूरा ऐसे ना इमेजिन में कर सकता हूँ कि वो माहौल बन चुका है और लोग आए हुए हैं। ऑब्वियसली अमित जी आपको तो मालूम है कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल वेयर तो वो सब देखने को मिलेगा, सभी लोग पहन के आएंगे। जी, और अभी तुम देख रहे हैं कि मेन वो भी अपने पूरा फुल कॉस्ट्यूम में आते हैं, खास करके अमित जी, एवरी टाइम ही कम्स इन हिज कॉस्ट्यूम, तो अच्छा लगता है। एंड दैट्स गोइंग टू हैपन, और जैसे मीना जी ने बोला है कि बच्चों को तो जरूर आना है एंड एंजॉय करना है, बिकॉज कुछ कुछ प्रोग्राम में हम जाते हैं जो पूजा पाठ होता है, शांत बैठना पड़ता है, नो सुनना पड़ता है, बट जब कृष्ण जी का कोई भी त्यौहार होता है देन बच्चों की तो एकदम छुट्टी होती है, तो डेफिनेटली दे शुड कम इन हैव अ गुड टाइम। और ये जो राधा कृष्ण भजन मंडल है वो काफ़ी जो कार्य भी करती है, जैसे मीना जी ने मेंशन किया है, अगर आपको घर पे कीर्तन वगैरह कराना है देन डेफिनेटली दे कैन कॉन्टेक्ट यू।
0: हाँ, जिनको भी अगर अपने घर घर जाने का बोले ना
1: जी, घर
0: तो घर घर जाने में जैसे माता की चौकी जाते हैं हम लोग और कृष्ण का कीर्तन करते हैं, आपको उस दिन भी आप जो इन जनरल भजन सुनते हैं वो भजन नहीं होते, उस दिन बधाई के भजन होते हैं, एक से एक बधाई होती है, आपका पाँव धरती पे नहीं रहता, इस तरह से आपको भी ऐसा लगता है कि मैं भी इसी तरह से नाचूं और इनके धूम में धूम मचाऊं, इस तरह से हो जाता है। और अगर किसी को हमें बुलाना है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनके घर पे भी हम, उनके वहाँ छोटा बच्चा भी आता है तो हम वो बच्चे की भी बधाई करते हैं, सोहर भी गाते हैं, और सब तरह के सारे देवी देवताओं कीर्तन। अभी जैसे गणपति बप्पा भी आने वाले हैं, तो 18-19 को भी हम दूसरों के वहाँ पे गीत गाने जा रहे हैं, जो RKVM के मेंबर हैं, आउट ऑफ RKVM भी मैं बहुत सारे प्रोग्राम करती रहती हूँ, लेकिन मोस्टली RKVM ने आजकल इतना बिजी कर दिया है, टाइम नहीं मिलता है।
1: जी हाँ, बिकॉज अभी हम कहेंगे, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हमारी जो संख्या बढ़ रही है क्राइस्ट चर्च में बहुत लोग हो चुके हैं, और जब हम प्रोग्राम करते हैं ज़्यादा तादाद में भी लोग आते हैं, अच्छा भी लगता है बिकॉज दे आर कमिंग, और कुछ कुछ नए चेहरे भी मिलते हैं, दे कम, दे वांट टू जॉइन, दे वांट टू डू समथिंग, तो अच्छा लग रहा है कि, और पहले में मालूम था कि यू नो हम कुछ कमी लोग थे, बट अभी, और फिर अभी हम देख रहे हैं कि लोग जगह जगह भी बढ़ रहे हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोग हो रहे हैं, रोहतसन अगर देख लो तो वहाँ तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, सो विच इज़ नाइस, अच्छा लगता है देख के। तो चलो, हमारा हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक तो जैसे आपने बोला कि लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा करके अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वहीं पे इजी पड़ता है सभी लोगों को कांटेक्ट करना, तो आपका कोई फेसबुक पेज वगैरह होगा? ये राधा फेसबुक पेज,
0: फेसबुक पेज था तो सही, लेकिन अभी उसको ये नहीं किया हुआ था, क्या बोला तो अपडेट नहीं किया हुआ था, तो वी विल सी दिस कितना होता है, सोचेंगे करने के लिए।
1: जी बट अदरवाइज अगर किसी को संपर्क करना है देन दे कैन जस्ट कॉल यू ना, आपको कॉल कर सकते हैं,
0: हम वैसे है इसमें फेसबुक पे पर, लेकिन उसको अब अपडेट की जरूरत है तो हम अपडेट करेंगे।
1: श्योर, हाँ, बट अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए प्ले यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, जलसा फीजी रेडियो पे आप मैसेज वगैरह कमेंट्स वगैरह डाल सकते हो, एंड वी विल पास ऑन टू मीना जी, अमित जी, एंड देन दे विल गेट बैक टू यू। अगर आपको घर पे कुछ कराना है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट, और ये आपको याद दिला दे कि

0: बहुत ही सज जाता है गीत, तो आप इमेजिन कर सकते हो। हाथों हाथ अगर आप आए हुए हो मीना जी, जैसे आपने बधाई सॉन्ग बोला है, जैसे आप फिजी में बधाई सोहर या कुछ हम बोलते हैं, तो आप कुछ बधाई वाला गाना गाओगे? देखते हैं
1: बधाई
0: कि
1: देंगे। हाँ, बधाई वाला गा देंगे।
0: हम बस वो कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारे फिजी में जब लोग गाते हैं वो और आपका क्या डिफरेंट है।
1: हम जो गाते हैं वो बता।

के अंगना, ये तो हो गया अंगना मिलने का, लेकिन कुछ कुछ गोपियां, कुछ कुछ नंद गांव के ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमको दूर दूर कहाँ पे खबर मिली है, यमुना पे खबर मिली है कि यशोदा जायो।

जमुना पे सुन के आई, फिर वो आती है और आते बराबर क्या कहती है, और फिर वो बधाई भी मांगती है कि अरे तेरे लाला का सुन के मैं आई यशोदा।

0: रंगों में रंगनाए, लेकिन जो होली के ट्रेडिशनल गाने होते हैं वही गाए जाते हैं. ऑफ कोर्स बॉलीवुड के बिना आजकल काम नहीं चलता है, लेकिन वो बाद में, लेकिन पहले ट्रेडिशनल सॉन्ग्स.
1: जी हाँ, बढ़िया, बहुत बहुत बहुत खूब. और काफ़ी लोग जो अभी जुड़ रहे हैं हमें देख रहे हैं, तो याद दिला दे, ये जो इवेंट है श्री कृष्ण नंदोत्सव, आपको जाना है 53 वैंकूवर क्रेसन वाइनोनी में, और 5 सितंबर रहेगा 3:30 ऑनवर्ड्स. शाम के बेला में आप जा सकते हो और काफ़ी धूम मचेगी. और जो ये राधा कृष्णा भजन मंडल है काफ़ी सालों से है और काफ़ी लोग हैं इसमें, और सभी लोग
0: से.
1: जी हाँ, तो लोग सब धूम मचाएंगे और आई एम श्योर यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम. और अमित जी, इसमें भोजन वगैरह
2: प्रसादम तो डेफिनेटली, किसी कोई भी फंक्शन, इंडियन फंक्शन में प्रसादम तो होता ही है, तो डेफिनेटली नाइस टेस्टी प्रसादम एंड स्वीट्स डेफिनेटली.
1: ओके, और किसी को अगर कुछ योगदान देना है, शायद कुछ साथ में लाना वगैरह है,
0: वो जिसको भी आना
1: इच्छा अनुसार, कोई रुकावट नहीं है,
0: वो उनको, वो तो इच्छा पे है, जो भगवान के सामने रखेंगे वो भगवान जी का है. और फिर वो जो अमाउंट आता है वो भी हम ऐसे ही फंक्शनों के लिए वापरते हैं.
1: जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और ये सुन के, और ऑल द बेस्ट कि सब अच्छी तरह जाए और अच्छी तरह इवेंट हो, सक्सेसफुल रहे. और ये भी हम आशा करेंगे कि उस दिन जो हमारा क्रशेश का मौसम भी साथ दे, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने देखा उससे कुछ असर नहीं पड़ता, लोग वही साड़ी पहनते हैं और किसी तरह बिना जेसी वगैरह के काम चला लेते.
0: आप सब के ना, सभी लोग मोस्टली कम इन गोपी ड्रेस
1: जी,
0: अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के आओ, छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बनाओ, छोटे छोटे बच्चों को गोपी बनाओ, और खूब आपको अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, वो भी अपने अपने स्टाइल से डांस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर पहले से थोड़ा सा टच में रहना चाहिए. और अभी काफ़ी दिन है, तो छोटे बच्चों को अगर उस दिन भी वो लेकर आए, उनको कुछ करना है, तो हम करने देंगे.
1: जी हाँ, थैंक यू सो मच. तो ये थी मीना जी और
2: विनेश जी.
1: जी हाँ, तो फिर मिलेंगे हम किसी और दिन वीडियो पे. वीडियो ऑफ करने से पहले याद दिला दे कि हम बात कर रहे थे मीना जी से और अमित जी से, और ये राधा कृष्णा भजन मंडल की तरफ से जो इवेंट जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, श्री कृष्ण नंदोत्सव जो रहेगा 5th of September, जो सरडे पड़ता है, बस कृष्ण जन्माष्टमी जो हमारे रेफ्यूजी लोग बनाते हैं उसके बाद में जो सरडे पड़ता है, शनिवार को 3 to 7:30 PM आप जा सकते हो 53 वैंकूवर कृष्ण वाइनोनी. थैंक यू सो मच, शुभरात्रि, आप अपना ख्याल रखें, और आज तो अच्छी थोड़ी गर्मी है, बट डू बी केयरफुल बिकॉज वेदर चेंज हो जाता है. एंड देन डोंट फॉरगेट दिस इवेंट, और इसका पोस्टर वगैरह हम डाल देंगे अपने फेसबुक पेज पे, वो इजी रहेगा आपको याद करने के लिए. थैंक यू सो मच एनिको, एंड थैंक यू फॉर हेल्प एनिको, यू कैन स्विच ऑफ द फेसबुक लाइव वीडियो नाउ. जो लोग हमारे साथ है फ्रीक्वेंसी में है, आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए एक और गीत सुनाते हैं, और इस गीत के बाद में हम और कुछ बात करेंगे, और भी हमारे पास समय है, तो विल ट्राई टू हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स जो प्ले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब गेस्ट होते हैं तो हमारे पास शायद सॉन्ग्स के लिए कुछ कम समय पड़ जाता है, तो विल ट्राई टू कवर अप जितना हम सकेंगे, बट आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.

Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Denny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फिजी रेडियो, मैं हूँ प्रवीण रेक्टर विनेश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, जैसे हमने वादा किया था कि हम कुछ सॉन्ग्स आज तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो चलो नेक्स्ट सॉन्ग तैयार है, ये सुनिए, और उसके बाद में जैसे जैसे समय मिलेगा कुछ बात भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।

0: खुलने अपनी शादी का इन्विटेशन भेजा भाई।
1: अरे और साबा कौन ठाकुरा?
0: फिर मुड़ गया भाई, उम्र भाएगा भाई। अरे सरदार है वो रामगढ़ का हैंडलेस ठाकुर।
1: वो ठाकुर उसकी शादी है? शादी कब है? कब है शादी?
0: सरदार इट इज टुमारो।
2: चाहे ठाकुर की शादी हो या गब्बर की, चाहे कुछ भी ओकेजन हो, बाल तो कटाना है, हैंडसम तो दिखना है, तो सिर्फ एक नाम याद रहे अपुन का चॉइस, नीर बाबा, बोले तो एनजेड फ्लेम्स बाबा, 190 आई वेरेकी रोड प्रिनवा स्टेज, नो अपॉइंटमेंट्स नेसेसरी। नीर बाबा इज एन एक्सपर्ट इन रेगुलर हेयर कट्स, फ्लैट टॉप, रेजर शेव, स्किन फाइट, सीजर कट्स, रेजर कट्स, चिल्ड्रन कट्स एंड बियर्ड ट्रिमिंग। उसका नंबर है 0271273687 या तो फिर 0397431711। सुअर के बच्चों नाम याद रहे एनजेड फ्लेम्स बाबा।
3: जी हाँ, नाम याद रहे एनजेड फ्लेम्स बाबा। अब जा सकते हो वेरिक रोड बाल कटाने के लिए। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा चेंज करते हैं माहौल और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स सुनाने की कोशिश करते। तो ये गीत सुनिए, थोड़ी नई गीत है कॉम्पिटिटिव जो गीत अभी आप तक सुन रहे थे, तो आशा है कि ये गीत आपको पसंद आएगा।

जी हाँ, झुमका गिरा काफी पुराना गाना था, लेकिन इसको फिर रीमेक किया गया, तो पुराना भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट आपके ऊपर है आपको कौन सा गीत अच्छा लगता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा नेक्स्ट सॉन्ग है आपको सुनाने के लिए, और होप करते हैं कि ये गीत भी आपको पसंद आएगा।

0: Why bother with insurance? Let's hear from Richard Sevak, Risk Management Specialist, having 15 years experience here in Christchurch, operating his own business, Lifestyle Solutions.
1: If something goes wrong with the right cover in place, you will have enough money coming in to pay your bills, put food on the table, genuinely cope and maintain your lifestyle when times are very uncertain for you and those around you. It is like having a fence at the top of the cliff rather than calling an ambulance at the bottom.
2: जी हाँ, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए रिचर्ड सेवक को फ्रॉम लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस, और हमारे पास चेक करते रहिए बिकॉज वहाँ पे आपको सभी जानकारी मिलेगी, या तो फिर हम पे हमें भी आप डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं, विल गिव दी फुल डिटेल्स फॉर रिचर्ड सेवक लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस। जी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट सॉन्ग वो भी बिल्कुल तैयार है सुनाने के लिए। सो दिस वॉज अ न्यू सॉन्ग जो अभी हमने सुना, तो हम नेक्स्ट वाले जो सॉन्ग है उस पर चलते हैं एंड सी विच वन हम सुनाते, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये गीत आपको कैसा लगता है।

जी हाँ, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सॉन्ग हम आपको नेक्स्ट सुनाने वाले हैं। लेट्स सी, एक गीत है हमारे पास और आशा है कि ये गीत भी आपको पसंद आएगा।

आपको पसंद आया होगा. इसमें और भी कुछ है और भी आगे गीत है जो हम आपको सुनाएंगे और आपसे अलविदा भी लेना चाहेंगे कि हमारा समय हो चुका है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे इसी तरह फ्रॉम 5 PM टू 6 PM. और बीच बीच में जो लोग हमें फेसबुक में फॉलो करते हैं हम जुड़ जाते हैं कुछ वीडियोस लेकर, बिकॉज हमें जब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो समाज के लिए होता है देन हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाने के लिए. तो चलो शुक्रिया एंड ये गीत हम आपके लिए छोड़े जाते हैं.